ये जो यहाँ जैसे कहने दे मैं बात रहा चंद बामा आज रंग रंग बजे ये बाबा ना बजे माँ जगह चंद दिया दे दे आज वातावरण जमा लता माँ रब्बा मुझे